सतगुरु हो दयाल तो सरदा पूरी है, सतगुरु हो दयाल न कब हूँ झूरी है, सतगुरु हो दयाल तो दुख ना जानी है, सतगुरु हो दयाल तो हर रंग माणी है। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों मानते हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत शाम खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो उड़ान लैके जिंदगी जिंदाबाद ते चढ़दी कला की पहचान रेडियो उड़ान प्रभ संत दे नाल।

0: 40 के, 50 के, 60 के, डजंट मैटर, कोई इसमें क्रेडिट चेक नहीं होता, गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है। 30 से लेके 100,000 की फंडिंग अपने अकाउंट में हासिल करें, हाफ पोर्शन ग्रांट है, स्किल डेवलप करें, तालीम हासिल करें, एडुकेशन हासिल करें। नंबर 437-264-31-75, 437-264-31-75। तुसी हुणे भी कॉल कर सकते हो जी 437-264-31-75। नंबर अगेन 437-264-31-75। जैसे अभी फोन आया, कह रहे थे मिलते नहीं सरांश, तो मतलब हमारा ऑफिस तो है असली में ना, हजार स्क्वायर फीट का ऑफिस है
1: भाई। तुसी ड्रिंक का चाहिए भाई, कहीं ड्रिंक नहीं, वधिया भाई ड्रिंक का वधिया रखो ले आके
0: भाई। कोकोनट वाटर रखे हमने 200 कोकोनट वाटर रखे हमने।
1: वो कहंदे कोई ये पिंदे नहीं, कहंदे कोई कनाडा को वधिया लेके रखो, बीयर पूरा लग लिया के रखो,
0: शुगर फ्री कोकोनट वाटर रखे 200, एक हफ्ता चल जाता है उससे हमारा
1: भाई। बीयर लेके ठंडी लेके रखो, ऐसे निकल जाती गर्मी आ गई।
0: हां जी हां जी हां।

ठंड मेरे वे दुखिए शरीर नू मां इक वार मैनू कह दलबीर तू पै ठंड मेरे वे दुखिए शरीर नू शाम हो गया ई वेख सवेरा तू छेते कर आजा मुड़ के माता तेरे पुत तिया सारे परेशान ने चुप जाई।

0: sad, jump are fast, you are fast, happy sad, not it horsey be sad, bole, sonny hall, sassier car.
1: मम्मी पापा दे वीजे ली सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी है ते पांटी बबली दा विजिटर वीजा भी लगवाना है मेरा ते खर्चा ही बड़ा हो जाना है
2: शमी पठल होरा ने तोड़ा खर्चा छोटिया इंस्टॉलमेंटा च बदल देना है
3: वधिया बेनिफिट वाली इंश्योरेंस पॉलिसी वाजिब कीमत ते लेके दिंदे ने शमी पठल
4: सुपर वीजा ते विजिटर इंश्योरेंस दी बेस्ट डील ले याद रखो इंश्योरेंस एडवाइजर शमी पठल जी दा नाम
3: 416-917-7763 416-917-7763 Life Insurance, Visitor Insurance, Super Visa Insurance, Critical Illness, Disability Insurance, RESP, Travel Insurance, Convert Expensive Mortgage Insurance to Term Insurance.

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दियां सारियां आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले 100% कैनेडियन मेड, टॉप क्वालिटी स्वीट्स, हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165
1: ओहो, सर्दी च हीट नहीं जल्दी ते गर्मी च एसी।
2: ले आपा हुणे करदे आ संधू साहब नाल गल ते करदे आ मसले दा हल।
1: एसी, फर्नेस, गैस लाइन, वाटर हीटर या ह्यूमिडिफायर सर्विस या इंस्टॉलेशन, नव एयर कंफर्ट ते जतिंदर संधू नु कॉल लाओ ते लाइफ च कंफर्ट पाओ। कॉल 647-706-6640
3: 647-706-6840
4: रोकी, तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार?
5: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
4: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
5: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
6: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
5: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-500-1509 ते।
6: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
5: 416-509-1509
6: और विजिट insuranceforyou.ca।
7: ਸੀ ਹੋ ਜੇ ਏਜ਼ ਡਰਾਈਵਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਭਾਲ, ਤਾਂ ਡਕਾਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪੇ ਪੈਕੇਜ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਨਾਲ, ਸਟੇਬਿਲਟੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡਕਾਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ 437-242-3158।
8: दुनिया विच किते भी घूमण फिरण लई या सस्ते टूर पैकेजेस लई, याद रखो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल, 905-678-1200 कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल दो लोकेशन तो अपनिया सेवावां प्रदान करदे ने। 2883 डेरी रोड ईस्ट मिसिसागा, सेकंड लोकेशन 4550 एबनेजर रोड ब्रैम्पटन।
9: Stargate Logistics, North America di one of the fastest growing company. Hire kar rahe ne AZ drivers. Jekar tuhanu vi hai kam di pal, ta aaj hi sampark karo Stargate Logistics de naal. Work locally ya cross border. Serve karde ne GTA, Midwest, Montreal te North America de vich. Stargate Logistics, aaj hi call karo 905-500-9992 905-564-9292।
10: ओ जी, हुण तुसी भी देर ना लगाओ, ग्रीन वैली सुपरमार्केट आओ, सुपर डील्स दे नाल ग्रोसरी ते डॉलर बचाओ। वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स, मीट, चिल्ड बियर, डाइन इन ते टेक आउट भी कर सकते हो। देर रात तक हफ्ते दे सत्तो दिन खुलता है। तंदूरी बाइट चाट एक्सप्रेस विच बैठ के वधिया स्वादले फूड दा मजा उठाओ। वधेरे जानकारी ते ऑर्डर लई कॉल कमाओ 905-913-1666, 905-913-1666 या पहुंचो 11665 मैकवीन ड्राइव मेफील्ड दे नुक्कड़ ते।

0: सतगुरु होए दयाल तो सरदा पूरी है, सतगुरु होए दयाल न कभू झूरी है, सतगुरु होए दयाल तो दुख ना जानिए, सतगुरु होए दयाल तो हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों को माणते हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत सवेर, चढ़ती कला वाली सवेर, तो खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरा लैके मैं थोड़ा मेज़बान प्रभ संधु। पंजाब की धरती तो निरपक्ष निडर आवाज़ रमेश हुशियारपुर जी साडे नाल जुड़ चुके हैं, तो सुनने वाले सारे स्रोतों को प्यार सत्कार अदाब सत श्री अकाल ते नमस्कार। सो स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 7:02 हो चुके हैं, थोड़ा साड़ा साथ हुण तो लैके 8 बजे तक बनया रहना। उम्मीद करते हैं तुसीं ठीक ठाक होंगे, अज की खूबसूरत सवेर नूं तुसीं इंजॉय कर रहे होंगे, अकाल पुरख का शुक्र कर रहे होंगे। तो 905-673-3337 नाल दी नाल स्टूडियो का नंबर दे दिए, 905-673-3337 तुहाडियां गल्लां बातां रमेश जी तक बहुत शॉर्ट ते सीमित शब्दों में पहुँचन, ताकि रमेश जी उन्हों का जवाब दे पाउण, खबरां दे नाल सांझ पाउणे आ। पंजाब दी धरती तों रमेश हुशियारपुर जी साडे नाल जुड़े हुए ने, सत श्री अकाल कहिंदे आ, जी आयां नूं कहिंदे आ, अज दी नवीं सवेर नवें प्रोग्राम नवीं खबरां दे नाल। रमेश जी सत श्री अकाल, तुहाडा स्वागत है बहुत बहुत स्टूडियो दे विच, की हाल चाल है जी? रमेश जी सत श्री अकाल जी, थोड़ी आवाज़ आई थिंक पहुँच रही है, मेरे तक थोड़ी आवाज़ नहीं पहुँच रही। ओके रमेश जी माइक्रोफोन, ओके 905-673-3337 ओके जी सत श्री अकाल रमेश जी, मेरी आवाज़ थोड़े तक पहुँच रही है जी? नौ सौ पाँच छः सौ तिहत्तर तेती सैंती 905-673-3337 आई थिंक कुछ टेक्निकल इशूज़ आ, बस गए तो आए, लैट मी चैक 905-673-3337 जुड़े हुए पंजाबी लहरां दे नाल।
1: ਘਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਕਮ ਲਈ ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੁੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ, ਬੇਸਮੈਂਟ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ, ਕੰਕਰੀਟ ਡਰਾਈਵਵੇ, ਪੈਟੀਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਨਾਨਕ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਟੀਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਰੇਟ। ਫ੍ਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਨਾਨਕ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ 416-902-9293 ਨਾਨਕ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ।
0: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? रमेश जी सत श्री अकाल जी, आई थिंक मेरी आवाज़ थोड़े तक पहुँच नहीं रही। ओके मैं थोड़ा जहा टेक्निकल रीफ्रेश करके आया, बस गए तो आए 905-673-3337 बस एक सैकेंड मैं थोड़ा जहा रीफ्रेश कर ला, 905-673-3337

0: Bangalore Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 9054512600.
1: पापा पापा सुनते क्यों नहीं, चॉकलेट लेनी है।
2: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
3: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो।
4: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम्प टू बम्प ट्रैफिक एंड बम्प टू बम्प कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1 रेडियो आवाज।

0: जानकारी के लिए कॉल करिए 416-206-3200। अमन भाई एक बात और कहना चाहूंगा कि आपके अगर बहुत मजबूरी है, आपको दिखा है कि इस बार आपकी विंडोज डन हो चुकी थी और आपका टाइम हो गया है, अप हो गया है विंडोज का कराने का, तो आप हमें कॉन्टेक्ट करिए। हमारे पास फाइनेंस की ऑप्शन भी है, जैसे टाउन हाउस होता है वो $75 to $80 पर मंथ के हिसाब से हो सकता है, सेमी डिटैच है वो अबाउट $90 के आसपास हो जाता है पर मंथ। सो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कहने का मतलब ये है। सो आप कांटेक्ट करिए 416-206-3200 कोई भी विंडोज या डोर्स के लिए, आपको अगर कोई ज्यादा जानकारी चाहिए।
1: सिक्के बंद, लाइफ टाइम वारंटी के राइट विंडो फोर्स 416-206-3200, 416-206-3200। शुभानु भाई थैंक यू।
0: थैंक यू अमन भाई।
1: ऑल लिंक ट्रैवल तो कोमल है, तुसी किते भी घूमण जाना, दुनिया च घूमण दा शौक है, स्पेशली इंडिया या पाकिस्तान जाना, कोमल टिकट दे विच तुहानूं बेस्ट डील दे सकदे, कोई मैच नहीं कर सकदा। ऑल लिंक ट्रैवल दे कोमल 905-239-7711 905-239-7711 हाईलैंड ऑटो रिपेयर सेंटर ते तुसी अपनी गड्डी दी किसी भी तरह दी रिपेयर हाईलैंड ऑटो रिपेयर सेंटर तो करा सकदे हो। ते हाईलैंड ऑटो रिपेयर सेंटर जो कि 11000 गैरी गरेवाल तुहानूं फेस वैल्यू दे उत्ते यह वर्कशॉप रन कर रहे हैं 19 साल तो। कोई भी रिपेयर मोटरसाइकिल दी, कार दी, किसी भी मॉडल ब्रांड दी 19 साल तो 905-463-9053-9054-63-6363। 20 साल तो लैंडस्केपिंग च टॉप दा नाम है ट्रिपल ए लैंडस्केपिंग। अमीर ती रौणा दी कंपनी इस समय कारपोरेट घराणियां दे वड्डे प्लाजियां दी लैंडस्केपिंग करदी है। तुसी अपने मॉल, अपने घर या किसी फैक्ट्री दी लैंडस्केपिंग करवानी है 647-784-1213। इसी तरह मनमोहन दा नंबर लिख लो, अगर ऑटो इंश्योरेंस घट नहीं रही, मनमोहन, मनमोहन दा नंबर है 416-990-3200। 3 मिनट ते ऑटो इंश्योरेंस खलास, 416-990-3200। और जिन्होंने डक्ट क्लीनिंग करवानी है, एसी हजे प्रॉपरली चले नहीं, डक्ट क्लीनिंग कराओ जोरां शोरां ना। इस समय डक्ट क्लीनिंग गर्मियां दे विच बहुत जरूरी हुंदी है, तुहाडे सारे वेंट साफ हो जाणगे, सारी साफ हवा होगी घर दे अंदर। नानक डक्ट क्लीनिंग 416-729-1521, जिथे भी डक्ट क्लीनिंग करदे ने नवां फिल्टर पा के आउंदे ने, बिल्कुल फ्री आ डक्ट क्लीनिंग दे नाल। 416-729-1521 दे उत्ते तुसीं कॉल करनी है। मिल्टन फोर्ड चोपड़िया दा नाम चलदा है, गड्डी फोर्ड दी मस्टैंग होवे, मैकी F-150 लैरिएट या ब्रोंको होवे, सड़कां दे दहाई पाउंदे ने, तुसीं मिल्टन फोर्ड 416-302-9941 ते कॉल करनी है। और बोल्टन स्प्रिंग शॉप पटे कमाणियां च टॉप दा नाम है, गड्डियां दे पटे कमाणियां नवें पवाओ, बोल्टन स्प्रिंग शॉप 905-857-8282 नंबर है इन्हां दा, 905-857-8282। अशोक सैनी CPA CGA ने अकाउंटिंग दे विच बड़ी कन्फ्यूजन है, अकाउंटिंग च अकाउंटेंट $1500-1600 चार्ज कर लैंदा है, साल च मिलदा 5 मिनट लई है, $100 महीने का तुसीं पत्ता लाया है अकाउंटेंट नूं। CPA अशोक सैनी कहिंदे साडे कोल आओ, रीजनेबल कीमत ते अकाउंटिंग ते प्लस प्रॉपर डेटाबेस बना के देवांगे। 905-458-1399 पंजाब इंश्योरेंस वाले मुहिम वड्डी हुई है, किसी दे भी घर च कोई बीमार हैगा सिर्फ तुसीं इन्हां नूं कॉल करनी है, एक फैडरल गवर्नमेंट का फॉर्म भरवा के देंगे RDSP का 416-910-9000-416-910-9000 के उत्ते कॉल करनी है। RSG कस्टम सोफा, सोफे बनाओ, बैड बनाओ, बाबा जी का कमरा तैयार कराओ, गुरु पातशाह जी का, या तुसीं अपने अंदर उत्थे नमाज पढ़ते हो घर च, या तुसीं अपने घर कृष्ण महाराज या किसी भी जिन्हों भी इष्ट नूं मानते हो, तुसी RSG कस्टम वाले कहिंदे ने कि असीं बना के देवांगे तुहाडा बाबा जी का कमरा भी। 647-705-1317 दे उत्ते कस्टम सोफे तो लैके हर चीज़ तैयार करके देंदे ने RSG कस्टम सोफे वाले। मैनू शो तो बाद कॉल करनी है 416-518-3200। ते परम क्विक ल्यूब एंड रिपेयर 13 Richmond Street थोरल्ड दे विच नैगरा फॉल्स ने, 13 Richmond परम्स क्विक ल्यूब रिपेयर, कार SUV वैन ट्रक ले आओ तो रिपेयर करांगे, नैगरा फॉल्स टॉप दा नाम है 289-498-1300 299-498-1300। किसी को भी कर्जा हैगा, वड्डा कर्जा, कर्जा माफ करवाना 416-518-3200 ते मेरे नाल गल कर लियो, मैं तुहानूं दसूंगा किहड़े किहड़े स्टैप लै सकदे तुहाडी हैल्प हो जूगी, 416-518-3200 ते तुसीं कॉल कर सकदे हो। ते संतोष जी तुहाडा आंसर की आ?
2: ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਰੀ ਪੈਸਾ।
1: ਅੱਛਾ, ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਪੈਸਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੰਤੋਸ਼ ਜੀ। 7 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਹਰਦੀਪ ਪੰਦੇੜਾ ਦੀ ਟੀਮ ਚ 400।
3: Illegal trucking is not just an industry problem. It puts our families and economy at risk. Rogue operators are putting untrained drivers behind the wheel. They dodge taxes, exploit vulnerable workers, and force honest carriers to pay the price. Join us in demanding real enforcement, real accountability, and real consequences for lawbreakers. Unsafe trucks don't stay in one province. They travel the highways that keep Canada moving. Brought to you by the Canadian Trucking Alliance's Stop Illegal Trucking campaign. Visit stopillegaltrucking.ca for details.
4: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

0: रात आमे छड़ दिनी आ, पर जनाब चले किथे हो?
1: मैं चलिया स्काईडम ऑटो एंड बॉडी सेंटर, जेडे कर देने मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर।
0: ए ओई हन, स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज, जेना दिया जीटीए दे विच चार लोकेशन ने, मेरी फ्रेंड अनु दी एक्सीडेंटल कार भी फिक्स करके नवी बनाती सी।
1: जी हाँ, कारा दे नाल नाल बसा अते वड्डे ट्रकां दी हर तरह दी रिपेयर अते बॉडी वर्क दा काम भी कीता जांदा है। रेट वास्ते बेस्ट पैकेज प्रोवाइड कीते जांदे ने। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 905-874-9878।
2: Nobel Fresh Foods शहर विच इको दौरा पै गया टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबल फ्रेश फूड फेर नंबर ले गया आटा दाल चावल अले सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा नोबल फ्रेश फूड 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट दूसरी लोकेशन 20 ग्लिंगहैम ड्राइव इन ब्रैम्पटन फोन 2898010566 नोबल फ्रेश फूड
3: भाई ये ट्रक ता हुण मैं चंगी तरह चलाउण लग पिया हुण सोचदा वे कोई यूज ट्रक ही ले लवां पर समझ नहीं आउंदी वी कित्थों लवां
4: ओ इहदे च सोचण वाली कीड़ी गल आ ईगल ट्रक सेल्स वाले बिल सेखू नूं कॉल कर ओए ओहदे तों वधिया कोई नहीं
5: जी हां जे तुहानूं यूज ट्रक दी लोड है ते तुहाडी पसंद दा मेक इन मॉडल दा ट्रक तुसीं इहनां तों लै सकदे हो अपना ट्रक वेचण लई वी याद रखो ईगल ट्रक सेल 17 स्ट्रेटन एवेन्यू ब्रैम्पटन कॉल बिल सेखो
6: 9601965-2340-647-765-2340-647-765-2340
7: You're listening to Gumtaz Radio on AM 530 from 10 to 11 a.m. Monday to Friday with Jazz Tagar, your favorite show.

0: मेडिकल इंश्योरेंस नंबर हैगा जी 416-817-6500। दिस इज हरप्रीत सैनी, चार्टर लाइफ अंडरराइटर एंड सर्टिफाइड हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट फ्रॉम टॉप चॉइस इंश्योरेंस एजेंसी।
1: You're listening to Punjabi Versa, Monday to Friday, 11 a.m. to 12 p.m. For more information, call 647-448-1000.

Brampton या फिर तीजी लोकेशन 9985 मैकविन ड्राइव यूनिट 9 ब्रैम्पटन इंडियन फ्रूटलैंड ते हुण चौथी नवी लोकेशन 1465 मेफिल रोड ब्रैम्पटन वधिया ग्रोसरी सब तो नेड़े इंडियन फ्रूटलैंड 9054569900 इस बार गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश का आगमन आपके घर ला रहा है ढेर

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन, पिस्ता, रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026। 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: भाई साहब, जिंदगी दा कोई भरोसा नहीं, इस करके हाथ दे विच इंश्योरेंस पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है।
2: ता इस लई आज ही हरप्रीत सैनी नो मिलो। इना कोल ने स्पेशल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स विद इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। तुहानू सिर्फ 10 साल या 20 साल लई पे करन दी लोड है, ते इन्ने नाल ही तुसी पूरी लाइफ कवर्ड हो। डिविडेंड्स दे नाल हर साल कैश वैल्यू ग्रो कर दी है, ते कवरेज इंक्रीज कर दी है। वधेरी जानकारी लई कॉल हरप्रीत सैनी 416-817-6500।
3: Kataria Tours and Travels, located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection Upper. To see cheap flight tickets, Nepal de vecho, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar, the route options sono chahide ne. Jan to see visa services, Nepal de vecho, puri family vacation Upper jaan di sochu ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna wa ji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection Upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection open.
4: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कृषि आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157
5: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
6: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 905-460-8888, दैट्स 905-460-8888।
5: सर्विंग फ्रॉम 2 लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
7: नोबेल फ्रेश फूड शहर विच इको रौला पै गया, टॉप क्वालिटी ते लो लो प्राइसा विच नोबेल फ्रेश फूड फेर नंबर ले गया। आटा, दाल, चावल, दाली सब्जी ते दूध क्यों सब मिलेगा नोबेल फ्रेश फूड। 2945 सैंडलवुड पार्कवे ईस्ट, दूसरी लोकेशन 20 ग्लिंगहम ड्राइव इन ब्रैम्पटन। फोन 2898010566। नोबेल फ्रेश फूड।
8: विमला विलेज ला विलेज पढ़दी पीओ च जंट पढ़दा, विमला विलेज ला विलेज, विमला विलेज ला विलेज पढ़दी। सत श्री अकाल जी, मैं हां तुहाडी अपनी शिप्रा गोयल, ते तुसी सारे सुन रहे हो वतनों दूर रेडियो सुखी निजर जी दे नाल।

0: कभी कभी।
1: अकाल डक क्लीनिंग वाले पिछले 40 वर्षों तो साड़ी कम्युनिटी की सेवा कर रहे ने। साड़ी कम्युनिटी की सब तो पहली कंपनी है डक क्लीनिंग दी। आजकल उन्होंने स्पेशल लगाए ने, खास करके ब्रैम्पटन, मिसिसागा, इथोबिको लोकल एरिया दे विच किसी साइज का भी घर हो अप टू 3000 स्क्वायर फीट दे डक्ट क्लीन कराओ। जी हाँ, ओनली $140। वैसे तो रेगुलर प्राइस $250 विच करदे ने, लेकिन हुण उन्होंने स्पेशल लगाया डक्ट क्लीनिंग सिर्फ ते सिर्फ $140 देवो ते अपने डक्ट क्लीन कराओ। बड़ी ही बढ़िया ढंग नाल डक्ट क्लीन करनगे, सैनिटाइजर करके जानगे, नाल दी नाल इह हर तरह दी रिपेयर करदे ने, इंस्टॉल करदे ने एयर कंडीशन ते फर्नेस। www.akalduct.com अज ही इन्हां नूं बुकिंग वास्ते कॉल कर लो 416-710-0662 416-710-0662।

0: 5 locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: किसी ने भी अगर कार वैन एसयूवी लेना टॉप टॉप टॉप का नाम एक है वह है एरन मिल्स एक्यूरा। एरन मिल्स एक्यूरा दे जगदीप भला और करण शर्मा नू कॉल करो। नंबर वन सर्विस, नंबर वन रेट्स, प्रोफेशनल ऑनेस्ट टीम ते रिलायबल। सो कार वैन एसयूवी कोई भी लेना हो एरन मिल्स एक्यूरा 905-828-5800 ते कॉल करो। कार वैन ट्रक का काम हो याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डियां लेके जाना रिपेयर के लिए रॉयल ऑटो सेंटर। टेस्ला दे व्हीकल्स से भी काम करते हैं कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल। सेफ्टी सर्टिफिकेशन ऊबर लिफ्ट की सेफ्टी करवानी है स्पेशलाइज करते हैं इलैक्ट्रिकल कंप्यूटराइज डायग्नोस्टिक काम च स्टील एंड मेलनी। रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478-905-799-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1478-1